ले आरी नर्द ने यंग वहाँ वो आप जरात एरे वोल का जगह नामाकी ए मारी होगर चूना रहा चे थूले मोहेगर चिमले नाथजे हागनी चिन दूर हफ्शीलन हिलजे सूल्तन हागनी चिन नमते एरे दस्ते ओचेगर हल्सोगर पुर हिलज कर गारा इन्हें मालूम नहीं तो गर उदाने उशो Hardogarotane Ushabalabul Ushumin Tai Shivalat Mini Ahigi Chilung as a ne Trudrin Ugdagonuge Ubri Nordonashi Ubduki Nogulat Uslisil Alchigin Aldan Erben Jüler Ishat Kota to Harian Hilji Vettel Hagani Chini Hurjirut Hevne Vui Chutumutu Avra Un Hoyrodane Horsli Pikwisho Vavala Yakshit Sutkilamri Vesatkwe